मानस खाने करे निवास चुरी बगैंतन गलता तिन कर भ्रमण पूरे ना ओ न भी आवे सात कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहा सरम तरम का डेरा दू नानक कूड़ रहया प्रभु मथे टिक्का तेड़ तोती का खाई हाथ चुरी जगत कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मिले स्थान ले पूजे प्रा अपख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे यो अन असाडा पिटे तन फिटे फेट करें मन जुटे चुली परे कहो नानक।

भगत ए मन ठहरावे, बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। हर चरण कमल की टेक,

सब जग जिन्हें उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन सजया पाई, देकर अपनी वत्थ।

होइया सब की तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, एक सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, इत दिन मरिए चूर। करन करामन समरथो पाई, सर्व कला भरपूर।

जगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्त

जी से जान जोग मह सुख वासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी।

चाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आखे बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चौपाई।

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के

अशिक्ष्य उबार अशिक्ष्य संगरु दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब

कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै

पूर्व लिख लिखे गुर काया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन बताहे काट नौ पुन बताहे रहाओ आक तो हर रस साधना जाने तनांतर हो मैं कंडाहे ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है जमकाल सह सडंडाहे हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पवकंडा है अनासी पुरख पाया परमेसर ओम खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही राहे रा गौड़ी ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਨੀਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਗੈ ਬਸਲ ਸਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਲ

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुक्त ना जाने छड़ बहे कारबार, सबको पुराया